0: ti amo.
1: دوست دارم.
2: میگوتاندا.
0: سارانهیو.
3: ام یو آی.
0: یو آموت.
3: این سرعتلک.
4: Ich liebe dich.
5: Du Andala.
0: Da duashum.
6: Kaham chen.
3: Yak tanda.
1: Main tumse pyar karta hoon.
3: Ik hou van jou.
0: सोने मैं भी तेनू बहुत प्यार करती हां
7: वो आई नी
8: रोइन द गैरी डी
9: दिया निफुना
10: नमुला नमुलस गंजवे
8: ओ बेबी आई लव यू सो मच
11: आइस्ते मास
12: कवाई
6: ते या कखम
11: Hoe oile?
13: Volumte.
14: Ifatuaki.
15: Ani ohev otach.
16: I love you.
17: Ami tomake bhalobashi.
18: Я люблю тебя.
19: Sagapo.
17: Jag älskar dig.
4: Jag älskar dig.
11: I live for you!
0: Kajwarata.
1: Nenu ninnu premistunna.
3: Ana uhibbuk.
14: Soniye, main tenu bahut pyar karda.
0: Behabbak.
3: योग इल्स्की दी
1: मा तिमलाई माया गर्छु
3: इख लिएप दी
15: या कुचान्द
3: तु सेट दाराम
1: ना चेरा गगजी दो ने ने नु प्रेमिस्तुन्नानु
0: निंगु होला
17: Sagapo
14: 88 58 Seni seviyorum.
11: 690 Main tumko pyar karti hu.
5: Dezagen.
17: 748 Me contente toi?
0: 21 Nan unnai kadalikiren.
5: 31 Mengo ngachete.
11: 061
18: Minä rakastan sinua.
10: আমি তোমাকে ভালোবাসি
3: তাকোতে ইমাম রাদা
17: লিসা সারাঙ্গেও
6: ইহতি লিয়েব
17: ইহ কোনো কোয়া ইস
13: আই লাভ ইউ হেন
0: এন্টে হাবিবতি
3: এউ চি আমো
1: मैं तुमसे प्यार करता हूं
5: ते आमो
4: आई लव यू
0: ते क्यूरो
11: वकुचा लाई
17: साके ए तोमोए
0: जे टेम
5: दिनो को डा मानी
10: Okay. Jeg elsker dig for fanden.
5: Kia orata.
0: Nallegi vagit. Jo te quiero.
17: Men du sætter dig.
5: T
2: Diyakutanda.
16: Chanrakter.
19: Gizogan.
20: Kia orata.
21: I fucking love ya.
22: I love you too, sister.

chan prabhu dhanyabad. जिंदगी मन को ती काम को बंदगी एक दुई तीन चार पाँच कक्का